अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाह प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देख सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार रहाउ।

थान थनंतर डब रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिया सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड भागी तन खात संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखिया से

रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागै डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

हार तिसह त्याव हो मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन माहे त्याय गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पां साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौं तिन कै बलिहार नै जे गुर की पैरी पाहे साध

संसार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसर या पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा। दो कृत सो कृत मंधे संसार सगलाना दोहूं।

पद पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कह

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार आस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गोरड़ा खे से उबरे साचे स्यों लिवलाए हर जी

आखी है मैं गुण नाही कोय, हर वर नार सुहावनी मैं पहावे प्रभ सोय। नानक शब्द मिला बड़ा ना वे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर।

क्यों चिर रहे सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुर जिया बल जाऊ रहाऊ।

सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार, सच माने तिर से जड़ी गूढ़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार, साच

पूरा तोल। कथने कहन न छुट्टिये ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाइये बिन हर भगत प्यार। नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतारु, श्री राग महला पहला। सतगुर पूरा जे मिले पाइये रतन बिचार, मन बीजे गुर अपने पाइये सर्व प्यार। मुक्त

सोए गुर भंडार पाइये निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिये पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मिटनो सतगुर असुर संहार पग जल बिखमंडरा।

चलो अभिमान नानक शब्द विचारिय पाइय गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िय पी विकसै असनेह जल मह जी उपाय कै बिन जल मरन तनेह मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहे।

पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे खे सार पार थल हरियावले।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला मन मुख भुलै भुलाई फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरै छूटै शब्द कमाए। श्री राग महला पहला चित्ते जिस है तौल हर बगे बंक द्वार।

मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै को, सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वसिया सोए। नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए। ज्यों सुपने निस भुलिए जब लग निंद्रा होए, इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए। गुरमत होए विचारिए सुपना इहो जग लोए, अगन मरै जल पाइए ज्यों बारक दूध है माए। बिन जल कमल सो ना थी है, बिन जल मीन मराए। नानक गुरमुख हर रस

17 अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा कर।

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ह चौदस जाए, जेता उड़ह दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए।

रहाओ। तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया, वेखह कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो। प्रगट पहारै जापदा सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो। सतगुर कौ बल जाइय जित मिलिय परम गत पाइय,

जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब किछ जानदा।

सब सचो सच वर्तदा जिस पावे तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ले समाए जियो गोपी ने गोवालिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन सत

जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया भेत भेत चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया।

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै बनजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। जोबन कटै जरुआ जणै, बनजारिया मित्रा। आम कटै दिन जाए, अंत काल पछतासी। अंधले जां जम पकड़ चलाया।

अलाथ अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बनजारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वणज।

सदा हर सच मन वसै निहचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार जिहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चै सतगुर सेवै।

तुद आपे धरती साजिए चन सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे एक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल न व्यापई जिन सच अमृत पीवे।

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी, हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम,

पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाना सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राज।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कम

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ध्याइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर

तिस ज्ञाने सा कुलवंती सास बरहाई जो फिर कै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन ना जाए जो फिर मेल लई अंग लाए थिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे भांत भांत बन बन अवगाहे निर्भ

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावह गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाईऐ होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजहै पैरा गुरमुख हृदय जाकै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपियै तित तरियै गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवां।

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौं जीवा जियो। दुख पंजन निधान अमोले निरपहो निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहो मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

चलत भ्रम सगला खोया, नाम निदान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप बखाणी, गुर कहया सब एको एको, अवर न कोई होएगा जियो। अमृत

खीर अगा वै ज्यों निर धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहु मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवां अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो, माज महला पंजवा, प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोको साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया, आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो,

देखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हों बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सो सच स्वामी, रिजक सब सिखाओ जीए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई, सब पौ दिन सह हर हर त्याई।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी। बहा पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय,

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भुख लह जा बणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसै।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया। मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम ना लेवै मरै बिख खाए।

चाहे सब कट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया।

अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावनिया। सो

गुरमुख मैल चुका बनिया, गुरमुख मैल चुका बनिया, माज महला तीजा। गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा। मन उजल

मिलै तचू कै फेरा, जा तुद भावै ता नाय रचावै, तू आपे नाउं जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउं लिव लागी।

इस गुफा मह अखोट भंडारा तिस विच वसै हर अलख अपारा आपे गुप्त प्रगट है आपे गुर शब्दी आप वन्या बणिया हों वारी जीओ वारी अमृत नाम।

गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिये शब्द सुहावे गुरमति मन सचो पावे सचो सच रवहै दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा ब्रह्म मिले ता उतरह सब वियोग नानक को प्रभु।

मंगिर माहे सोहंदियां हर तिर संग बैठड़ियां तिन की सो भा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियां।

हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया हो वै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओर।

मर जाती। गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने होमै विच दुख काले नानक गुरमुख होमै टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी

हो वह राजे रसकस बहुत कमावे है, जा तुद भावे तेग बगावे है, सिर मुंडी कट जावे है, जा तुद भावे जाहे दिसंतर, सुन गल्लां घर आवे है।

जिसनों नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी भगता तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया, करता आप अफुल है ना।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए। गुरमुख

मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हो जीवा, हर बिन चसा ना जी।

तार भौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुन।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लाग। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आ गए। जन नानक हर रस तृप्ति।

हर नाम मन चित नित त्यावहो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज आनंद।

गुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो, मन मोर

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन।

सतगुर दर्शन अगन निवारी, सतगुर पेट तहो मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सच महराते।

गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। जिस मन वसै तरै जन सोए, जाकै कर्म प्राप्त होए।

भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हौ तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, चौ पदे दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना।

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहिथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुना।

सहज घर आवह। राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर भरम चुकावह। निर्भउ कै कर ताड़ी लावह, हों हों कर मरना क्या पावह। पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावह।

गुर पेटे सो झगर चुकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हों मैं बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया,

अलख अपेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, ना मोह भूले जम का दुख सहना। मैं तार नाम ज्यों राखो रहना,

हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे भरम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिन की संगत गुरमुख होई ना।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जियां मह एको रवै।

आत्म सुख तारा इत उतरा खो दीन दयाला तो शरणागत नदर निहाला रहाओ। जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना दियारा। जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या पास है जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पाताला।

गवाइए, अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाइए। नजर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे, नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे। गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द न

मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देखह कोए, बिन नामै को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कलमह गुरमुख उतर सपार, साचा मरै न आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर धारा।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख।

नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम लिव लाई। गुर मिले हमको शरीर शुद्ध पई, हो मैं तृष्णा सब अग्न बुझई।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख डंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुरु मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किश एक।

होवै, जास जपत मल सगली खोवै, जास जपत रतन हर मिलै, बहुर न छोड़ै हर संग हिलै, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मह आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया।

दिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत

लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पश पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दिसै पासारा, विनस जाए गो सगल आकारा। सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद निश्चल सच थाना, तहां संगत साध गुण रसै, अन पौ नगर तहां सद वसै, तह पौ परमा सोग ना चिंता, आवन जावन मृत ना होता, तह सदा

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वडियाई।

आऊं। जो इस मारे तिस कौ पहु नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता। जो

तिस कुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवा।

हर संग रखवाला पूर्ण पुरख नवतन नितबाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस

मंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद सब

तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एक।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

पुरुष माने प्रगट पुरख सब ठाऊं जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना। श्लोक

गोविंद भजहो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

टेक भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए। खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पई आनंद सुख विश्राम।

अखर महंत्र पवन प्रवत हरे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला प्रभ कै सिमरन सुफल फला।

तढ़वंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्ब के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा।

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सोना।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिनतु साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

तिसहत्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ध्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहे।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।

बदी। मानो की टेक बिरछी सब जान, देवन कहो एक भगवान। जिसका दिया रह अघाय, बहरना तृष्णा लाग आए। मारे राख को आप, मानुख कै कृष्णा ही हाथ। तिसका

जाप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त

सृष्टम चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान

मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन।

सब कोए। सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर

अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की रीस है होर

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की। जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े। जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। तुद नो सब ध्यान दी।

करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

जह अबोल तह मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई, अलह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बटक बीज महराव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद।

पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मुरार सत संतोख का तरहो ध्यान कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान।

करै दुख बिखिया सुख तन पर हरै काम क्रोध अंतर तन हिरै दुविधा छोड़ नाम निस्तरै सिफत सलाहन सहज आनंद सखा सैन प्रेम गोविंद आपे करे आपे बख्शिंद तन

पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेव हो जो उपजाय सो अलाख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

जहाओ हर हर हार कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन विद चित तहे मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा देई।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिस नेह चल रहना। जीवत मुए मुए से जीवे हर हर ना।

सब जी सम्हारे एको एक आप एक एक है सगला पासारे जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

किस आख सुनाइए। जे कहना सो प्रभ जी पास, सब किश कीता तेरा वरतै, सदा सदा तेरी आस। जे देह वड्याई तां तेरी वड्याई, इत उत तुझ है।

जहई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चा शब्द सुपाखिया पढ़।

शिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिए सगल पराशत।

अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बो

अभिष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद न बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पए संग तेरे इंद्री का बल थाता चरण रहे कर टरक परे है मुख हो न निकसै बाता थाके पंच

कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोई आसा। जो मैं रूप किए बहुतेरे अब हुन

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ, जल तरंग

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।